भगवान के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छो प्राप्त होती है, कितने बड़े भाग होते हैं हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार, ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जात का है, गुरु सूरज के मुआफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल

जित कर हर कंत ना प्रगटे, पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूनिया मीत सज्जन सब जाम, नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम। हर मेलो स्वामी।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ावया दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

मंगर माहे सोहंदिया हर पिर संग बैठड़िया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया राम।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

तुम दो जा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तुर बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सो सब जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई।

जन को सब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे इस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा है। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां, करो। अठ घंटे कम करना पएगा। ठीक है, करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना कम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहे। ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं, वायदा अठ घंटे दा। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवांगे। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा, आटा प्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए, कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले।

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतरण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

बात भूले, कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथो ताह कैसे, कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें हैं, उसकी बहुत फैक्ट्री है, इसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है, वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

एक है हरी हरी, ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी, ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उना दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है। हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर ध्याए कुस

तब एक मानस दे ही पाए मानस जन्म अमूल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई तब एक मानस दे ही पाए इस दे को सिवरे देव पज गोविंद भूल मत जाओ पज गोविंद भूल मत जाओ मन सिम का ही लाओ

जब लग बिकल पाई नहीं पानी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

या भीतर जो राम बस है साचो ताए पछानो पई पर आप तू मान देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत बोते

मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया मतन होए चलंब जे सतगुर पाया चले जन सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै चले जन्म सवार चलिया पक्षो जन्म सवार वाजा वाए सी चलिया

कई जन्म पैकेट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो, कई जन्म पंखे सर्प होयो, कई जन्म है वृक्ष जो मिलो जगदीश मिलो की बरिया।

मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नू नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दित्ता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर हमला

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, ओह मेरी मां नहीं, हो सकता है उहदे पुत्र दी शकल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओह सिंह दी मां नहीं हो सकदी, क्योंकि सिंघां दीआं मावां इंज सिदकों डोलदीआं नहीं हुंदीआं। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दीआं मावां कदों सिदकों डोलदीआं ने, ओह ते आखदीआं ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दीआं एहो जीआं गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लगोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल।

गाउंदी होई आज एक मां धर्म दी खातर अपने पुत्र नू वार के टुर गई है। किमें चाह है सिंघां नू शहीदियां दा, इन्हां नू मौत कोलों डर नहीं आंदा? नहीं ओए, इन्हां नू मौत कोलों डर नहीं आंदा, सगों मौत इन्हां कोलों डरदी। दरबार सजिया है, कलगीधर महाराज तख्त ते बैठे ने, पिछे बैठी एक माई रोई जांदी है। सतगुरां ने इस नू कोल बुलाया, क्यों बई क्यों रोंदी है, तेनू की गल है, केड़ा दुख है? महाराज, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र जंग विच शहीद हो गए सन। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਬੱਚਿਓ, मैदाने जंग विच जाके कदम पछा नहीं पुटने, अगे होना है। जदों मैं एक खबरां सुनांगा ना कि कलगीधर दी जीत हुई है, मेरे बच्चे बेशक शहीद होए ने, ते मेरा फकर नाल सिर उच्चा हो जाएगा, मैं माण महसूस करांगा। इनी गल आख के ये माता फिर रोण लग गई। कलगीधर आखन लगे, सिंघणीए तू पंजां ककारां दी त्यार पुर त्यार सिंघणी हो के शहीद पति ते पुत्रां दी खातर रोंदी है, सोभा नहीं देंदा। ना महाराज, ऐ गल नहीं, माता आख रही है, ना महाराज ऐ गल नहीं। हजार वार इस धरती ते आवां, हजार वार तेरी शान दी खातर पति ते पुत्रां नूं बाहर जावां, कौन मरनों डरदा है? रोना इस गल दा है जदों मेरा पति ते पुत्र घरों जंग वास्ते टुरन लगे सन ना, ते एक मेरा पुत्र बीमार हो गया है, जो अजे तक बीमारी नाल मंजे ते पिया है। मैनू डर रहिंदा है किते बीमारी नाल ही काल वस ना हो जावे। महाराज, मेरे पुत्र नू ठीक कर दिओ, तेरे एक इशारे ते मैं अपने पुत्र नू नाल ले के मैदाने जंग विच जूझ जावां। महाराज सुन के हैरान होए, कलगीधर चमत्कार विच ये इतिहास लिखिया है अज जो तुसी इस कैसट विच सरवण कर रहे हो। तन तन है सिंघणीए सिदक तेरा, भले जगत दी खातर आप मोई। तन है सिंघणीए, तू अपने पति ते पुत्रां नू जीवन मुक्त करवा लिया, फिक्र ना कर, तेरा पुत्र बीमारी नाल नहीं मरेगा, ना कर फिक्र। गरीबां ते मजलूमां दी खातर सरबत दे भले लई जंग विच जूझदा होया शहीद होएगा ते गुरु नानक दी गोद विच जा वराजेगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त होवेगा। चरणा नू पकड़ लिया, महाराज एयो ही चांदी सी, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र तेरे इशारे ते शहीद हो के सचखंड बराजे होणगे, ते असी क्यों बांझे रह जाइए? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दा उपदेश कदी भी सिंघां ने नहीं भुलाया, अज तक भी सरबत दे भले लई अपना सिर अगे डा देंदे ने। एयो ही अरदास, देहे शिवा बर मोहे इह, शुभ करमन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चे कर अपनी जीत करूं। ए महाराज, ए सतगुरु, ए मालक,
ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਾਹ ਨਾ ਹਟਣ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਦਕੋ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇ।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश कीती गई है। आप समूह संगत नूं खालसा जी दे 300 साला जन्म दिवस की